0: Le ghazal est le genre de prédilection de Hafez de Shiraz, le persan. C'est un poème d'amour, une parole amoureuse, littéralement. On le retrouve jusqu'en Asie centrale, au gré des invasions, et au Pakistan, par exemple. Il est chanté en langue ourdou par Oustad Mehdi Hassan, qui l'a invité dans l'univers du raga. Véritable étoile que Mehdi Hassan, qui a interprété plus de 600 chansons dans 445 films entre 1956 et 2000.
1: एक पेश करने लगा हूं नामुमकिन राग मैंने तो नामुमकिन रखा था कि ये क्योंकि ये बड़ा विहंगम राग है और ये बैकग्राउंड फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक में काम आता है डिस्कॉर्ड है सबके सब और ये पता नहीं एडमिंटन कार्ड क्या कहते हैं इसको और ये सुर वहाँ इस्तेमाल करते हैं फिल्मों में जहाँ कोई हादसा एक्सीडेंट या कोई डेथ का सीन हो कुछ हो हाँ लिहाजा बुजुर्गों ने इसको कहा है इसको रोक दिया कि ये इन सुरों में ये बात बेहतर नहीं है रूखे हैं ये सुर व्यंगम है तो उनको अब ढंग में लाने के लिए सुर तो नहीं चेंज किए सुर चेंज करता तो फिर तो वो राग नहीं रहता लेकिन वादी संवादी से कि किस सुर को ज़्यादा बढ़ा जाए किसको कम किया जाए जिससे इसमें रचाव पैदा हो बहुत विहंगम है तो पेश करने लगा हूँ खास साहब ने भी इसका नाम और खास साहब ने सोलो बजाया है जो कि ये भी नामुमकिन है साजों में बजाया जाए इस राग को लेकिन खास साहब ही का काम सुल्तान खान का काम है ये कमाल बजाया है इन्होंने तो इन्होंने सहरा नाम रखा इसका वो रेगिस्तान जहाँ कई कई सौ मीलों पानी नहीं है वो सहरा तो वैसे आदम साहब की गजल है ये जब तेरे नैन मुस्कुराते हैं जीस्त के रंज भूल जाते हैं जिंदगी के रंज भूल जाते हैं

मेरे ख्याल खान साहब बरसों के बाद आज इनकी मेहरबानी मेरे साथ गजल बजा रहे, वरना इनका काम क्या गजल बजाने का, ध्रुपद धमार और बड़े ऊंचे कवियों के साथ बजाने वाले लोग हैं, लेकिन ये इनकी मेहरबानी। वाह वाह,